जी रानी पांडव बीच का भाई बीच मा सदा थीन द्रौपदी छोरा पांच पराक्रमी होना गए ती द्रौपदी का पछी रानी अर्जुन की पछी होना गई बहनी जमुना की नारायण।

がりかな。いへらまへらまへらまい。まつはパンダをバイオルケバエバネデキウタパキパラマッマ。サテジバシャパサリラジェウニレ。サテジバシャパサリヤダバハルジョビプラカシラパレ。साराची ये भाई प्रभासा तेरा माँ देखे जैसे ही कृष्णा ले दिखवाने मन माँ कुलाची ये भायो जानू पर लाऊ भानी सूर्यारण होई भूषण बनी भायो दादे ही बाला राम पानी नारायण

कहाँ बालक राजा परीक्षित राज्य हस्तिनापुर को राज्य समर्थन करें आपू भि सब स्वर्ग रहने भयो 60 वर्ष सम्मान राज्य करे राजा परीक्षित हरामा हरे दैव कठैबरी नारायण।

0: मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाऊ सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले जियौ
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैंडी में थपलो सात मेगा हर्ज बाट हो मुपति प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन 2026 जून 8 तारीख ज्येष्ठ 25 गते सोमवार अष्टमी तिथि अब स्तुति करूं

मिकपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर द नारी ले प्रगति पथ को यज्ञ।

सबिर तंत कई लच मन दिले विस्तार सुनाए अनी सीता जुन गहना खसाली गई तीन हाजिर गराए पनि गिरिजे पाठ सीत पो खसाली ती गईन चिंडे तयाई तिए कसका होन ये चिन्ने बकुसनु होस् यो हजुर मा दिए यति बात गरी दिए ती गहना देखे प्रभुले जसाई चिने सब गहना र शोक बहुत भई

दसाई। सुग्रीव मंत्री लेता प्रभु जी को दिल खुश गराए तसाई। हे राम रावण लाई मारी सजाई सीता जी लाई यहाँ। आज

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तासलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दश जो दायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानी के सुनि पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपिश तिम्लो उजागर, रामदूत अजुलत बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुतराम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार्य स्मृति की संगी, कंचन वर्ण विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बरजाओ ध्वज विराजई, कांधे मुझे जने साजई, शंकर सुबन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगा दरवाया, हेम रूप दर असुर संहारी, रामचंद्र की काज संवारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हरसिउर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतम भाई, सहज बदन तुम्हारे जस गावे, अज कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, एम कुबेर दीपाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्रीव किना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताई मधु फल जानु, प्रभु मुंद्री का मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, वतन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तिनोलोक हागते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर्षव पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग पड़ताल तुम्हारा, है परसी जगद जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता, असवर दिन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रो रघुपति दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से सर्वसु करई, संकट कटई मिट सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत

बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी मां सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सनाहरी चेरा किजनाथ हृदय महडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवंश रूप सियावर रामचंद्र शंकर जी बाजा जय हनुमान जय बजरंग बली।